ऐसे सीट राम टू सतीश जागरीन और कंपनी भगवान चॉइस ब्लेसिंग्स टू यू ऐसे सीट राम टू विंद्र आउट द इन कैंपू जस्ट एंजॉयिंग द म्यूजिक एज वेल अबाउट ट्रिपल डोज ऑफ मोती माला भोले सिंह हियर्स अनदर वन